गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे हैं प्रभु जस मान रहे हैं और ये धर्म दा मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण कीता आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलदे ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलदे ने रहे लिव तार ना कहावत है भटकना मुक जांदी है लिव जुड़ जांदी है जीवन दा आनंद लैंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने।

संसार विच जाके संसार दे सुख नहीं मंगना चाहुंदा। मेरी तुसां ड्यूटी लाई है कि उस मात लोक दी धरती दे उत्ते जाके वध रहे जुल्मां नूं ठल पाउणा है कि हे मालक हे अकाल पुरख मेरे ते कृपा करनी, मेरे विच ए शक्ति पाउणी। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने हे रब हे सस। सतगुरु जी उस अकाल पुरख दे नामां नूं अनेकां तरह बयान करदे ने। जिदां आपां इक पंक्ति श्रवण कीती है कि संत सहाए सदा जग माए कृपा कर श्याम ए है वर दीजे। सतगुरु जी मैनूं ए वर देना कि मैं शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं। आख्या सतगुरु जी मेरे विच हे रब उस चंद्रमे दे मुताबक उस सूरज दे मुताबक रब आखदे ने सूरज नूं कि सतगुरु जी हे अकाल पुरख उस सूरज दी भां गर्मी भी होवे जोश भी होवे, हे सस उस चंद्रमे दे तरह शीतलता सा सुभाव भी होवे ताकि मैं डिग्गिया होयां नूं चुक के गल नाल ला सकां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख दे पावन पित्र चरणा विच जोदड़ी करदे होए ए मंग मंगदे ने कि जब आओ की औत निदान बनाए अत ही रण मैं तब जूझ मरो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दा टीचा ही सी कि देह शिवा भरम होए ए है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह उस अकाल पुरख तों ए वरदान लिते ते इस मात लोक दी धरती दे उत्ते आके जुल्मां नूं ठल पाया ते डिग्गिया होया नूं चुक के गल नाल लाया। गरीब दे रक्षक बने दीन दे रक्षक बने। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह दे उचारण किते होए सवैये दे नाल असीं खालसे दा जन्म दिहाड़ा मनाउंदे हां।

ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖਣਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਨਾ ਲੋਹੇ ਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਸੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਮੂਲੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਮੇਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਨੁਸ਼ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁਸ਼ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸੇ ਬਹੁਮੂਲੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਮਕੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ। ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਉਹ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਨੇ ਪਲਾ ਬਨਣਾ ਹੈ, ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਪਲਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਲਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਅਛਿਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਬਨਣਾ ਹੈ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਭਲਾ ਬਨੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਤੇ ਨਾ ਰਹੋ।
परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से विछड़े हुए हैं उनको हरि की पंक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाया। मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे? देखना, इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा? जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया? अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे? पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे? वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना, मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा? वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है? क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे? वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ, लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं बनता, धर्मी बनने से धर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है।
धर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। धर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की युक्ति बताता है। धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं, धर्मी बनने से धर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहा। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधिया विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे किते कोई होर ना लै जावे किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके लै जाए रात नू नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा अपनी उठदा पर धनवान बंदे नू नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया काच बादरे लाल खोई है तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नू खरीद के अपने आप नू बड़ा धनवान समझना बड़ा बलवान समझना भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड़ गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान

पवित्र उपदेश भाई गुरुदास जी का उच्चारण किया होया है। जेड़े गुरुमुख प्यारे मन करके कीर्तन विच बैठते ने ना, उन्हां ते किवें गुरु बख्शियां करता है। भाई साहब

हाथ जोड़ के संगत नू तरला कर रही है। मैं तारा राणी हां, राजे नू दसन तो बगैर आती है, चोरी आती है। जे उनू पता लग गया ते मैनू बोल कबोल बोलेगा। अज जदों हाथ जोड़ के बेनती की थी ना संगत नू,

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
2: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छुटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
2: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ए तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
2: ये सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
2: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
2: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
2: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है। ऐ मेरा है, ऐ मेरा है, ऐ मेरा है। लेकिन साहिब कहंदे ने ऐ मनुख ऐ बंदिया कदी ये भी आखें कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा ये तेरा दिता हुआ शरीर है, तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। तो जदों तू चाहे चलते हुए श्वासा संगल पा के रोक सकने है। तो फिर साडा ते नाना हो गया सारा कुछ। जियो पिंड सब दिसदा सब किच है तेरा।

जीओ पेंगे सब दिसदा सब कुछ है तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा सारे आंखों तेरा तुझको सौ

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, 1000 हो गए, 10 हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधदे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता है, कहता वाह, बड़ियां बड़ियां कीमती चीजां मेरे खुदा तू छुपा के रखी हैं ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब है। सिफर इतने हो गए, हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा है, हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला बड़ी, बड़े कीमती पत्थर दी, मोतियां वाली माला घुमाउंदा घुमाउंदा इहदे मन में आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दिता है, ए बाकी तो सारा मैं इकट्ठा कीता है। बोलो सिरे, मैं आ गया, कहल करना, ओही मैं।

जीवन या जीवन शाह नामे जापदा है, जो कि हिंदी सी, मक्के जाके रहन लग पिया सी, होर भी अनेका

इसी तरह ये जीवन सेवा करया करदा सी, सेवा करवाया करदा सी, पर आज जद जीवन सेवा करदा करदा पश्चिमी पासे वाल आया ताकि देखदा है एक आदमी सोता पे ते पैर उस दे मेहराब वाल हन। मुसलमाना विच निमाज मक्के वाल मुंह करके पढ़दे हन, मक्के वाल पैर करनी उन्हां विच भारी बेअदबी है। सो उस जीवन नु गुस्सा चढ़िया ते आके उस सुते आदमी नु लत मारी ते कहा तू कौन है जो खुदा वाल पैर

मेरे पैर खुदा वाली सही, तू उधर कर दे जिधर खुदा नहीं। वो जानता है कि खुदा सब नी पासी है, मैं खुदा नू एक दोषी समझ के भूल कीती है, ते गुरु जी ने सर्व

काम अग्नि दे भांबड तो मन बचाओ ते शीतल सुख का जाणो हो। इउं कर बंदगी रोजे रख ता तेरा सिदक पूरा होवेगा निभेगा। रुकण दी सलाम कीता आख्या वाह वाह अज खुदाए दे।

दुनिया दा असर डाढ़ है, खुदा किस तरह मिलता है। ये सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है, जिसनू उन्होंने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल तरबां दा प्रीतम सी, नैन उचे हो गए ते डाढ़े मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप सरवण कर रहे हो। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश।

अल्लाह ए वाहिगुरु तू वड्डा है करीम है दया करने वाला बेऐब है तेरे विच कोई ऐब नहीं तू दुनिया नु पालन वाला है ए दुनिया मुकामे फानी ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नानक बगोयो जन तुरा तेरे चाकरा पाखा दुनिया खत्म होने वाली। ओ धर्म राजा तो वाला तो फड़ के ले जाओगे।

नानी की गल कहंदे हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे।

मैं डर के काबे दी उस्तत कीती जिस तू ओ मुड़ के फिर अपनी असली जगह ते आ गया। इस गल दी गवाही वास्ते

ना ता केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल दी तरह मनदे हन जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र

वो कटोरा समंदर में सुट दिता, कटोरा डुब गया। वो लड़का टप्पण लग पया, खुशी नाल नचन लग पया। फकीर कहन लगा, काका कटोरा तेरा डुब गया।

मैं घरों कटोरा लेके आया, किस कटोरे विच समुंदर दा पानी भर लवा। सवेर दा लगा सी पर कटोरे विच सारा समुंदर मैं ना भर सके। फिर ख्याल आया जे कटोरे विच समुंदर दा पानी नहीं आ सकदा, कटोरा तां समुंदर विच समा सकदा है। मेरा कटोरा समुंदर विच समा गया, मेरी चिंता खत्म हो गई। उस फकीर ने उस लड़के दे पैरां ते

जिस दिमाग दे विच उस परमेश्वर दी कायनात उस परमेश्वर नूं भर लवां उहदा अंत पा लवां पर हुण पता लगा उस मंदर दी तरह अथाह है उहदा अंत कोई नहीं पा सकदा।

0: ya. Ondan dek hoş ol bakatır.
1: Savaş. Şere. Mal paran yanı.
2: Çokum kızar.
0: Ay, cemre! El atar! Dön cemre!
3: मेरी बॉडी ना देखने पागल हो जाएगी। मेरी सिंगिंग से कालेज के फैंसी की ओर दीने वालों।

परम सम्मान सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पात्र जी दे पवित्र कदमा अंदर अमृत वेले दियां हाजरियां भर रहे हो सोहने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो बहुत बख्शिश दोगे बहुत गुरु कृपा करे तो अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हों पर गुरु का कर्म हो जिन्हों पर गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया है होर किसे नाल नहीं जोड़िया एको जप एको साला एक सिमर एको मनया एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे से मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा जी बड़ा कठिन जे कोई समय ली एकाग्रता बख्श ली जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिंट गिणवे रह गए 94 मिंट रह गए हैं वो मिनटा असा सफल करना है सब तो पहला मन चित बिरतियां टिकाव च लियाओ एक बार प्यार नाल आखो सगना आखिया जी आख लिया जी हूने किन्ना बिखड़ा है किन्ना मुश्किल है नहीं आखिया जाता सारे को आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान में आए ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहगुरु आखना मुश्किल है एक वाहगुरु आखना कठिन है यह मैं नहीं कह रहा ये गुरु बाबा कह रहे रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचा ना बड़ा औखा है यह नहीं आख्या जाता आखो ना साधना देखिया जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी कहते आप बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बैठा कर्म करना हो अधी रात दौड़ पैदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करदा बाबा जी कहंदे बुरे काम को उठ खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पै पै सोया वाहिगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहिगुरु आखण वेले नूं उंगलान आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोलों नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जी इह बिखड़ा सौदा जी नाले सुस्त आदमी ते आख ही नहीं सकदा सानूं ते कलयुग पिया होया सानूं ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया पैरां थले लताड़िया होया कलयुगी बंदा ते वाहिगुरु नहीं कह सकता ये ओही कह सकता है जिसे ते गुरु नानक जी कृपा होएगी एक बारी आखो तुलसी जी का बचन एक पढ़िया जी बाबा जी ने कमाल कर दी है तुलसी जी का बचन मैं कह रहा तुहानू आखण औखा साचा ना क्यों औखा है तुलसी जी ने सलोक उचारे जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आंदा मैनू भी स्वाद आंदा की कहंदे तुलसी नाम जो राम को जिन्होंने रामायण लिखी है जिन्होंने राम का जीवन पेश किया बयान किया है खोलिया है खुलासा किया है कहंदे तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहिगुरु का नाम नाम सारे ही उदेश असा त्रेड़ा पाईया असा विथा पाईया असा दुआरा खड़िया कीतिया हुई नाम सारे उदेश नाम च कोई फर्क नहीं साडे जपन च फर्क है बड़ी प्यार की गल कह रहे हैं तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज भावे रीत किल लै ते भावे खीज किल लै रीत का मतलब की होया प्यार नाल आखना श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल भाव नाल भक्ति नाल ते खीज का की मतलब होया थोड़ी जी एकाग्रता खीज का मतलब पंजाबी का लफ्ज
फड़ के आखना, कुड़ के आखना, गुस्से नाल आखना, इओ मानो के मजबूरी नाल आखना। एक काम वो भी होंदा है ना बच्चा जिहड़ा मजबूरी नाल करदा है, बापू कहंदा है कि अमृत वेले उठना है, पर बच्चा मजबूरन उठता है, चित नहीं करदा, पर बापू दा हुक्म ते है, मां दा हुक्म ते है, एक मजबूरी नाल भी करना पैंदा है। तुलसी जी ने कमाल कर दित्ती, कहंदे ने ऐ इंसान ऐ बंदे अज गया तू, भावे खुशी नाल कह लै ते भावे औखा होके कह लै, वाहिगुरु ने तेनू फल देना है। वो कहंदे ने तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज, ते किसे ने आख्या है तुलसी जी एक ऐसा श्लोक उचारिया जे खुशी नाल याद करिए फल देंदा है, झोलियां भरदा है, बरकतां देंदा है, इच्छा पूरियां करदा है, ते जे प्रभु नु गुस्से नाल याद करिए, जे प्रभु नु औखा होके याद करिए, वो भी कुछ देंदा है, तां भी कुछ देंदा है। तुलसी जी कहंदे देंदा है तुलसी नाम जो राम को रीज लेओ चाहे खीज, कहंदे धरती पर सो उगत है उल्टो सीधो बीज, भावे बीज सीधा पै जाए भावे पुठा पै जाए, जदों किसान छट्टा मारदे ना धरती विच कोई सीधे पै जांदे ने कोई पुठे पै जांदे, सारे बीज बूज पैंदे ने सीधे ते पुठे सारे। कहंदे ने बीज ही ए प्रभु दा नाम जिहड़ा है ना ए बीज हैगा ही, भावे तू खुशी नाल कह लै ते भावे मजबूरी नाल कह लै ते भावे मेरे खोए आख रहे, इहदा फल तेनू अवश्य मिलेगा। एक बारी बोलो सासा एवें नहीं पातशाह कहंदे ने जपो ता एको नामा, पढ़ो ना आखो ना जपो ता एको नामा।